0: जी हाँ, काफी सुरीला गाना, मधुर आवाज लता जी और मुकेश जी की। फिल्म थी अनाड़ी और म्यूजिक डायरेक्टर थे एस जे यानी कि शंकर जयकिशन। और सुनने वालों, आप सुन रहे हो गीतमाला कमिंग टू यू फ्रॉम WVKR इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशन फ्रॉम वैसर कॉलेज। Let me give you your phone number here. It's 845-437-7178. Waiting for your calls. Let me know if you are enjoying this show or you don't like it. Let me know that too. We could do a switch around and change our songs if you don't like it.
1: जी हाँ, ये गाना जो था दिल की नजर से, एक तो नजर होती है आँख की नजर होती है जो हम देखते हैं, दूसरा होती है दिल की नज़र से। आप किसी को देखते हो दिल से, आपको पसंद आता है कोई इंसान, पर उससे बात करते हो, दिल की नज़र होती है वो। और वो एक चीज़ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपके दिमाग को पता नहीं होता वो आंखें देख भी नहीं सकती। एनी हाउ, बहुत सुरीला गाना था।
0: एक मिनट, क्या बोल रहे हो, जो दिमाग को पता नहीं होता वो आंखें देख,
1: आईज डोंट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो, so oh. mind has to know what and so it was a good surreela song.
0: yeah they are beautiful. inke iske bol bhi bahut hi khoobsurat the. ye shailendra ne likhe the,
1: shailendra, ha shailendra ke likhe hue gana hai ye.
0: All right listeners, if you're just tuning in, as I announced earlier, you're listening to the Geetmala show. The first hour is going on and we are playing songs from the music composers Shankar Jaikishan. The next song is sung by Mohammad Rafi and this is from the movie Seema, and a very melodious song, beautiful words. I think the actor was Balraj Sani. Kind of a soulful melody, so let's enjoy it.

0: जी हाँ, ये शैलेंद्र जी का लिखे हुए गाने में कुछ अध्यात्मिकता की बात हो रही थी, कुछ फिलॉसफी की बात हो रही थी, तू कहाँ जा रहा है, कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। ये समर टाइम है, आप कहीं ना कहीं तो जरूर जा रहे होंगे वीकेंड के लिए या समर वेकेशन पे, तो गीतमाला को मत भूलिएगा। अगर जहाँ भी हो, ट्राई टू लिसन टू इट, गो लिटल बिट आउट ऑफ द वे टू लिसन टू, ट्यून इन टू WVKR.org एंड गिव अस योर फीडबैक।
1: Alright, listeners, the next song is from the movie Dil Apna or Preet Parai. This is sung by Lata Mangeshkar and chorus, and again music by Shankar Jaikishan. And this is the popular song, Ajeeb Dasta Hai Ye. I think all of us have hummed it or loved this song or heard it multiple times growing up on the radio or on TV or on streaming services now that we have them around.
0: Right, right. क्या गाने का क्या टाइटल है?
1: अजीब दास्तां है ये,
0: दिल अपना प्रीत पराई।
1: Yes.
0: मैं तो बोलूंगा कि ऐसी मूवी भी बननी चाहिए, दिल अपना और प्रीत पराई, तुम मेरी और प्रीत भी मेरी।

0: Beautiful song by Mukesh, Ashok ji, sung by Mukesh, and from the 1948 movie Anjuman.
1: क्या बात है, एक शोक है जो दिल पे तीर मारा है.
0: Yeah, it does sound like Ashok, but it's Ashok.
1: I think he's a Gujarati speaking, living in Keeni at that time, so Ashok was Ashok, I would think, you know. Don't take it too personally, Dr. Shah.
0: All right, listeners, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब शुरू होने वाला है धमाकेदार म्यूजिक, पॉप म्यूजिक,
1: फुट टैपिंग म्यूजिक. मेक सम रूम वेयर वे यू आर, डाइनिंग रूम में हो, बेडरूम में हो, स्टार्ट, गेट, पुट योर डांसिंग शूज ऑन.
0: सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग.

0: जी हाँ, बड़ा ही अच्छा गाने की चॉइस थी और डॉक्टर पराशर ने भी फ़ोन करके अप्रिशिएट किया और सीमा और सुनील ने भी अप्रिशिएट किया है गाना. सो डॉक्टर पराशर ए सक्सेसफुल रिटायर्ड नेफ्रोलॉजिस्ट, कंट्रीब्यूटर ऑफ गीतमाला, होस्ट ऑफ गीतमाला एंड मेजर कंट्रीब्यूटर द फैमिली ऑफ इंडियंस एंड एवरी वन एल्स, यू नो ही टुक केयर ऑफ सो मैनी पीपल्स नेफ्रोलॉजी इश्यूज, किडनी फेलियर्स. And he's moving away to Edison, not too far from here. We expect him and invite him to come and join us anytime to host a song. And he used to host the songs and Geetmala when there was no streaming or YouTube. They used to carry audio cassettes or CDs, you know, he has shared with us. Padma or Parashar.
1: And Dr. Parashar, aapne bola tha aapke paas bhandar para hua hai CDs ka. To jarur unko New Jersey le jaiye taake आप म्यूजिक एंजॉय कर सकें. एंड वील सी यू टुमारो एट द हवन. सो
0: कभी भी आइए हमारे साथ इस रेडियो स्टेशन में, दोबारा होस्ट कीजिए प्लीज.
1: ऑलराइट लिसनर्स, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम. जस्ट लाइक टू प्ले अ फ्यू मोर ऑफ विशाल शेखर सॉन्ग्स फॉर योर एंटरटेनमेंट. सो लेट्स एंजॉय दिस नाइस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर. This is music again by Vishal and Shekhar and song sung by Udit Narayan and Shreya Ghoshal.

0: All right, listeners, this is probably the last song we're playing. It's almost time for us to move out and make way for the world music show called Tashidil.
1: Tashidil, and the hosts are telling me it's a Tibetan word. It means may you have an auspicious, joyful day and week. And I would say rest of 2026. You know, we are halfway through 2026. मनीषा ने गाने तो बहुत चुने थे विशाल ददलानी के लेकिन और
0: शेखर
1: रवि जानी के लेकिन
0: समय की पाबंदी की वजह से वी विल कंटिन्यू दिस शो प्रॉब्ली अनदर टाइम सैटरडे कीप ट्यून्ड लिसनर्स सुनते रहिए हर शनिवार 11 से 1 आपका चहीता प्रोग्राम गीतमाला
1: संगीत प्रेमियों और गीत प्रेमियों और गीतमाला प्रेमियों को गुड बाय बोलते हैं फिर आएंगे मनीषा और अरुण आपके लिए अच्छे अच्छे सुरीले गाने लेकर